0: परम सम्मान योग गुरु खालसा सत संगत जी, आप संगतां संध्या समय सतगुरु दे पावन पवित्र सोहने दरबार दियां हाजरियां भर रहे हो। रागी जथे पासों गुरबाणी दा रस पिना कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है, ते हुण आप संगतां पावन गुर इतिहास की कथा सरवण कर रहे हो। पंचम पातशाह शहीदां दे सिरताज शांति दे सोमे गुरु अर्जन प्रतक हर धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज पावन श्री अमृतसर साहिब जी की सेवा करवा रहे सन। लगभग सरोवर की सेवा संपूर्ण हो चुकी है। पहला गुरु रामदास महाराज ने पूर्ण ताल खटाया, अमृतसर विच जोत जगावै, उन्होंने सेवा करवाई। फिर कुछ देर सेवा रुकण दे कारण मीह दे कारण फिर उहदे विच मिट्टी भर गई। फिर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने फिर नवें सिरे तो इस अमृतसर सरोवर की कार सेवा आरंभ की। उस मिट्टी नूं भी बाहर कढ़वाया। मिट्टी नूं बाहर कढ़वाण तो बाद चार छपेरे पौड़ियां की सेवा करवाई, परिक्रमा की सेवा आरंभ की। लगातार कई साल सेवा चली, ते जदों करीब करीब पौड़ियां ते परिक्रमा की सेवा कंप्लीट हुई, फिर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे मन दे विच एक शुभ ख्याल आया। इस अमृत सरोवर दे अंदर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दी उसारी कीती जावे। ते जदों इस गल दी खबर सचखंड विच गई ते अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर फिर उत्थे आप सेवा लई हाजर होया। वो तुसीं पिछे इतिहास सुनिया भी है, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया रहा, तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया रहा। हुण गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने चंगे सियाने कारीगर बुला के सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दी न्यों रखी ते अरदास ब्रह्म ज्ञानी मुख ग्रंथी सचखंड श्री दरबार साहिब बाबा बुढ़ा साहिब जी तो करवाई। ते गुरु अर्जन देव महाराज ने पहली एटाप रखी, बाकी जेड़े गुरु महाराज दे नाल होर महान गुरसिख सन ते फिर उन्होंने न्यों रखी ते सेवा आरंभ हुई है। ते हुण उस दरबार साहिब जी दी जेड़ी डूंगी न्यों पट के ते पहली जेड़ी कुर्सी सी उस सरोवर दे पानी नालों कुछ उपर चुक के उत्थे हुण उह पहली छत पाई गई। इत्थों तक प्रसंग आप संगतां ने सुनिया है। ते जदों श्री हरिमंदर साहिब जी दी पहली जिहड़ी पाणी तो उपरली ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਗ ਦੁਆਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਰੀ।
0: ਸੁੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ,
3: ਬਾਹੀ ਚਾਰ ਹੋ ਕੌਣ ਸਮਾਨ,
0: ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
3: ਹਰ ਮੰਦਰ ਕੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ,
0: ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਥੱਲੇ

ना हिंदू सिख बलहारे जावन कर दे तेरिया गोजानू जीवन सफल बनावन खातर गाइए तेरिया चोजानू जीवन सफल बना

सिमरन सदन जो ब्रह्मादक लोचे दर्शन जो सन कादक जोगी जति उदासी आद कलब दे तेरियां गोजानू जीवन सफल बनावन खातर गाइए तेरियां चोजानू जीवन सफल बन

दीवान सजाए गए सजे दीवाना विच आप जी दे हजूर राही गुरबाणी दे कीर्तन इतिहास दिया गुरमत विचार कथा विचार हुई कविश्री वारा दे द्वारा आप जी का पावन जस गुर इतिहास गायन किया गया है जी। आनंद साहब जी दे छे पौड़ियां दे जाप होए हन समुचियां सेवावां निभाउंदियां होईयां भुल्लां दी खिमा करो जी। अगे वास्ते समत बल बुद्धि दी दात बख्शिश करो जी। पढ़ी सुनी गुरबाणी दा भाव दराईयां संगतां दे हिरदियां विच बख्शिश करना जी। संगतां दियां हाजरियां तिल फुल पेटां अपने दर ते प्रवान करनियां जी। दरों घरों गुरसिखी जीवन चढ़दी कला तंदुरुस्ती नाम बाणी दियां दातां परिवारां विच सुख शांति एकता उत्पाक नाम बाणी दियां दातां गुरसिखी दी दात बख्श

0: परम सन्मान जो सतगुरु जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु सवारी खालसा साध संगत जी बेनती है आप जी के चरणों विच कि थोड़ा समा इस तरह जुड़े रहने की कृपालता करनी। सतगुरु जी का अदब सत्कार मुख रखद्या सतगुरु जी के पावन स्वरूप सुख आसन अस्थाना विदायगी तो बाद इतों चाले पाउण की खेचला करनी जी आप समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जो सतगुरु जी की पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ करके सतगुरां की पावन गुरबाणी कथा कीर्तन गुर इतिहास श्रवण करके मनुखा जन्म दे प्राप्त समय और सवासां दा आनंद माण रहे हो बहुत बहुत धन्नवाद। साडे सत्कार योग भाई योगा सिंह भागोवालिया अते उन्हां दे समूह कविशरी जथे दा जो आप जी नूं पावन गुर इतिहास कविशरी वारां द्वारा आप संगतां दे नाल सांझ पा रहे सन। सतगुरु जी कृपा बख्शिश करन समूह जथे नूं चढ़दी कला तंदरुस्तियां दी दात बख्शिश करन इसे तरह देशां विदेशां विच गुरबाणी गुर इतिहास का प्रचार चढ़दी कला दे नाल करन दे बल उदम बख्शिश करन कोटान कोट धन्नवाद शुकराना दीन दुनिया के मालिक सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जिन्होंने महान कृपा बख्शिश की है अमृत वेले तो पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दीदार दरगाही उपदेश बख्शिश करके निहाल कर रहे हैं। सानू अपने पावन चरणों विच जुड़न का इस भागा समा बख्शिश किया है सतगुरु जी कृपा बख्शिश करन इसे तरह आउण वाला समा पावन चरणों नाल प्रेम प्यार बनाई रखन दरों घरों गुरसिखी जीवन चढ़दी कला नाम बाणी दीआं दातां बख्शिश करन। सो बेनती है आप संगतां दे चरणों विच कि जिस तरह आप जानते हो कि जो तकरीबन दो दिन पहला पंजाब दे विच घटना वापरी साडा बहुत ही सत्कार योग कौम दा पंथ दा पंजाब दा दर्द रखण वाला कौम दी नौजवानी नूं नशियां दी दल दल दे विचों कढ़न वाला शहीद भाई परमिंदर सिंह जिन्हों झोटे दे नाम नाल जालिया जांदा मानसे दी धरती तो कि नशे दे डीलरां वल्लों जिन्हां ने यह तहैया किया होया कि पंजाब की नौजवानी नूं नशियां दे विच डोबना उन्हां दी जवानी बर्बाद करनी उन्हां दी गोली का शिकार होया पर हैरानी की गल ये कि गोली मारन वाला जिहड़ा वह मलंग जिहा वह तो कहिंदे ने कि पहलो चार पांच परचे जिहड़े ने इसे कारण दर्ज होए ने कि नशे वेचण दा करके ते हैरानी की गल ये कि नशे वेचण वाले नूं उत्थे लाइसेंस असला ते जिहड़े कौम दी नौजवानी नूं बचाउण वास्ते दिन रात घरों तुरे होए ने उहनां दे लाइसेंस कैंसल ते उहनां दे असले भी जब्त ये कुछ उत्थे वापरिया ते असीं ये मत सोचिए कि वह एक मैडिकल स्टोर वाले ने कीता उस दे पिछे एक पूरी स्टेट जिहड़ी उह कम कर रही आ ते जो पिछले समय दे विच जिन्ने भी पंजाब दी नौजवानी नूं सुचेत करन वास्ते आवाज़ बुलंद कीती पंजाब दी किसानी वास्ते आवाज़ बुलंद कीती ते उहनां नूं किसे नूं एक्सीडेंट दे रूप दे विच जिहड़ा शहीद कीता गया भाई दीप सिद्धू वर्गिया नूं भाई संदीप जो कबड्डी दा खिडारी सी नंगल अंबियां तों उन्हां नूं गोलियां मार दित्तियां गईयां जां होर कोई भी पंजाब दे हक्कां दी गल करदा ते जे भाई अमृतपाल सिंह ने विदेशां दे विचों जा के ते कौम दी नौजवानी नूं नशियां दे विचों कढ के ते धर्म दे गुरमत दे राह दे उत्ते तोरिया आनंदपुर साहब वल नूं उन्हां दे मुख कराए ते उन्हां दे उत्ते NSA ला के ते अज बेशक ओह 4 लाख वोटां लै के ते लोकां ने अपना नुमाइंदा चुणिया MP बणाया ते पर अज भी वह आसाम डिब्रूगढ़ की जेल दे विच बैठा ये सानू प्यारे जनाउण वास्ते आ कि तुसी इस देश दे विच गुलाम हो भावें किसी नूं 10 लाख वोट बना के पा के अपना नुमाइंदा बना लो तो भावें 2 लाख बना के पा लो ताडे नाल इहो कुछ ही होना जे तुसी इस धरती दे उत्ते रहना ते तुहानू साडी गुलामी दे अधीन जिहड़ी अपनी जिंदगी बसर करनी पैणी आ ते जदों तुसी अपनी धर्म दी सच दी आवाज़ बुलंद करोगे ते जां ते तुहानू डिब्रूगढ़ वर्गियां जेलां मिलणगियां ते जां तुहानू इत्थे गोलियां दा शिकार होना पऊगा। सो ये सोचना असी हाँ कि उस गुलामी दे जूले दे थल्लों असी निकलना किदां क्योंकि असी जिन्ने मर्जी पापड़ वेल लईए जिन्ने मर्जी असी अपने फर्जां तों भगौड़े होण वास्ते कर दईए पर पिछले लंबे समय तों झात मार के वेख लो किन्नियां उत्थे कमेटियां बणियां किन्ने कमिशन बने की कुछ होया ते किते अज तक इंसाफ मिलिया। दिल्ली दे विच किन्नियां साडियां धीआं भैणां दी बेपत्ती कीती गई, किन्नियां दे घर बिजनेस जिहड़े बर्बाद कर दिते गए, किन्नियां दे गलां दे विच टायर पा के जिहड़ा उहनां नूं जिउंदा साड़ दिता गया। ते अज तक दसो दिल्ली दे सिख नसल कुशी दा एक भी दोषी होवे जिन्हों कोई फांसी की सज़ा सुनाई गई हो। जदों जवानी वेले तो उन्होंने इन्होंने कुर्सियां दे के नवाजिया, सज्जन कुमार वर्गे टाइटलर वर्गे जदों जवानी के अखीरले पड़ा दे उत्ते आए, जदों कह देंदे ने कि ना वह घटते रहे ना घाटते रहे, ना वो इस सिस्टम के वास्ते जिन्ना उन्होंने वरतना सी वरत्या, तो जदों उधरों भी वह बिल्कुल नकारा हो गए। तो उदों उतों दीआं अदालतां ने सज़ा सुना दिती कि फलाने सज्जन कुमार नूं दिल्ली दे जिहड़े नसल कुशी सिखां दी होई उहदे विच दोषी मनदिआं सज़ा। तो पहलों उहनूं मुख्यमंत्री दीआं कुर्सियां, एम पी दीआं कुर्सियां, सेंटर दे विच मंत्री की कुछ नहीं कीता। तो जे असी अजे भी कहीए कि उस देश दे विच रह के तो असी अपनी जवानी बचा सकते हाँ, अपनी किसानी बचा सकते हाँ, जां असी बहुत महफूज हाँ, तो ये साडे मन दा बहुत वड्डा एक भरम भुलेखा होवेगा। सानू इस भुलेखे दे विचों निकलण दी लोड़ आ, ते सानू जिहड़ा अपना आजादी दा राह आ उस राह दे पांधी बनण दी लोड़ आ। जिन्ना चिर तुसीं देश पंजाब नू दिल्ली दे गलबे दे थल्लों आजाद नहीं करा लैंदे, ना ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह।
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसीं सुन रहे सी लाइव from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

मन बेचैन है, चिंतातुर है, दुखी है, चेहरा दसदा है, अखां दसदा है। मन खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, चेहरा दसदा है। पर तन नू चोट लग गई है, कोई जख्म, कोई पीड़ा मन महसूस करदा है। तन दा प्रभाव मन ते पैंदा है, मन दा प्रभाव तन ते पैंदा है। पर मैं फिर अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तन नु भोजन चाहिदा ही चाहिदा है। और ये भी मैं अर्ज करा, चूंकि हवा तो बिना जीवना एक सेकंड भी औखा है, इस वास्ते प्रभु ने आम बनाई है। कोई मनुख हवा कमाण वास्ते एक शहर तो दूजे शहर नहीं जाता, अपने घर तो बाहर नहीं जाता, एक मुल्क तो दूजे मुल्क नहीं जाता। ते प्रभु ने पानी दी भी बारिश कीती हुई है, दरिया भी चलाए हुए ने, पर रोटियां दे दरिया नहीं चलते, रोटियां दी बारिश नहीं आती। ये भी मैर्ज करते हैं, एक कमाणी पैंदी है, पकानी पैंदी है, इहदे दरिया नहीं चलदे, इहदी बारिश नहीं आउंदी। तन भोजन दा पुतला है, हवा दी तरह, पानी दी तरह। यह भोजन आम कवि ने बनाया प्रभु ने, इस वास्ते मनुख दे राही कुछ विकास होवे, यह भोजन इस तों कुछ करवावे। रेलां, मोटरां, गड्डियां बनिया ने, सड़कां बनिया ने, बिल्डिंगां बनिया ने, दो रोटियां बनवा रही है ना, और कौन बनवा रहे है? इनी जड़ी हलचल है, कौन करा रहे है? भोजन करा रहे है, रोटी करा रहे है। किधरे रोटियां दे भी बारिश आउंदी, रोटियां दे भी दरिया चलदे, ते दरियावां दे कंडे मनुख पिया रहना सी, एवें ही सुता ही रहना सी, 24 घंटे कख नहीं करना सी। इतना जो विकास होया है मनुख तो, ये भोजन ने कराया। सब भोजन का विकास है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बहुत वड्डा व्यापारी है, यकीन जानो सब भोजन का विकास है और कुछ भी नहीं है। भजन ने भी बड़ा विकास कराया है, कोई फकीर है, कोई संत है, कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई दार्शनिक है, कोई चिंतक है, कोई भगत है, कोई जोगी है, कोई सन्यासी है, कोई उदासी है। इतना लंबा चौड़ा पसारा भजन ने कराया, मन दी भुख ने कराया। मन विच भजन दी भुख ना आउंदी ते कौन जोगी, कौन संत, कौन भगत, कौन सन्यासी, कौन उदासी, कौन सन्यासी बनना सी, किसने बनना सी, किसने फकीर बनना सी। भजन दी भुख ने संत पैदा कीते, भगत पैदा कीते, जोगी पैदा कीते, सन्यासी पैदा कीते। भोजन दी भुख ने इंजीनियर पैदा कीते, डॉक्टर पैदा कीते, लॉयर पैदा कीते, व्यापारी पैदा कीते, कारोबारी पैदा कीते। बड़ा विकास होया है, बहुत विकास होया है। गहराई नल लेना जरा। हुण दूसरा नुक्ता मैं पेश करन लगा। अगर भोजन दी किसे नू भुख ना लगे और टंग दी ना लगे, आयुर्वेद आचार्य कहंदे ने इहदा तन रोगी है, रोगी है, रोगी नू भुख नहीं लगदी। मैं इसका जाती तजर्बा पिछले साल मैनू हो गया, किधरे मैनू लू लग गई, पिछले साल दी गल है। उपर अलवर दे कोल एक पहाड़ है, ते 3-4 साल तो राजस्थान देच बारिश नहीं पै रही। प्यासे मोर हजारां दी तादाद दे जंगलां च मर गए, हिरन मर गए, सांबर मर गए। अठ 8-10 वड्डे मंदिर ने अलवर देच, उन्हां दियां सोसाइटियां ने बहुत वड्डे वड्डे टप उपर पहाड़ां ते रखे, ते ट्रैक्टरां दे राही, टैंकरां दे राही पानी पहुंचाया। मेरे कोल भी आए, कहने लगे कोई उद्दम करो तुसी वे,
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੱਖਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜੀਪ ਦੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਲੂ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੂ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਸੀ। ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਨੀ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ 10-12 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਰੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ।

सीमा तो वध काम वध जाए, क्रोध वध जाए, मोह वध जाए, ईर्ष्या वध जाए, मन रोगी हो जाता है। जैसे रोगी तन नो भोजन दी भुख नहीं लगती, रोगी मन नो भजन दी भुख नहीं लगती। हुण दूसरा नुकता भी सुन लेना, ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगती, भोजन दी भुख नहीं लगती। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पे जिन्हां दे अंदर भजन दी भुख है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। गुस्ताखी माफ, हर उस मनुख नूं मानसिक तल ते अपने आप नूं रोगी मन लेना चाहिदा है, अगर भजन दी तड़प नहीं पैदा होई, भजन दी भुख नहीं पैदा होई। वाहिगुरु आखण दा रस नहीं आ रहा, तेनू कौन दसे भुख ही कोई नहीं, तेनू रस कितों आवे। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंट, भुख दा ते स्वाद दा आपस दे च मेल है, तालमेल बैठता है भुख दा ते स्वाद दा। भूखे खावत लाज ना आवे, बहुत भुख लगी है, बहुत भुख लगी है, फिर मनुख शर्म नहीं करदा लोकी की आखणगे। एक चक्रवर्ती संत सी, मैनू चंगी तरह याद है, गुजर गया बाबा लक्ष्मण सिंह, पंगत च बैठे सी पटना साहब, असि 10-15 श्री रोवी नाल सारिया ने भोजन छक लिया। हुण उठना सी ते मैं कर चक्रवर्ती भी छक लेना, पर उन्होंने बड़ा टाइम ला लिया। नाल दे मेरे साथी ने सुभावक कह दिता, बाबा लक्ष्मण सिंह जी कदों उठना है? कहिंदा तुसी जाओ 4 मिनट दी बेशर्मी, सारे दिन दा सुख। कहिंदा मैं सारे दिन भुखा नहीं रह सकता, मैं 4 दिन दा भुखा, मैं मैनू खा लैण दिओ, जाओ तुसी जाणा। कोई की आखदा इहदी परवाह नहीं, भुखे खावत लाज ना, बहुती भुख लगी कोई की आखदा इहदा मतलब ही नहीं। जिस दिन साचे नाम की लागे भूख, ए भूख लग गई ना, लुखी की आखदे ने, पागल कहिंदे ने कि की कहिंदे ने, मनुख उस दी परवाह नहीं करेगा। सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लोकां ने। उन्हों लोकां दी लज्जा नहीं रहिंदी लोकी की आखणगे। जिन्ने चिर तक भूख नहीं लगी लोक लाज भी तंग करेगी, लोकी की आखणगे। इन्नी उच्ची उच्ची जपदा पे लोकी की आखणगे, पागल हो गए लोकी की आखणगे, अकल ही कोई नहीं। हमेशा पागलां ने सियाणे मनुखां नूं पागल ही आखे, ए भी मैं अर्ज करा। सब तो सियाणा होए जिहदे अंदर ये भुख पैदा हो गई, तंदुरुस्त हो गए, मानसिक तौर ते ठीक हो गए। सारे बनारस ने कह दिता कबीर पागल है, लोग कहें कबीर बौराना, ते पागल हो गए। सारे बेदियां ने गुरु नानक नूं दीवाना कह दिता, भूतना बेताला कह दिता, सतगुरु दा शब्द है, कोई कहे भूतना को कहे बेताला, हैरानगी दी गल। सारा बनारस दा मनुख कबीर नूं पागल कह रहे है, पर बनारस वासियां नूं कौन दसे? इको ही ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागलां दी भीड़ है, सब पागल। इको ही बंदा जिहड़ा तंदुरुस्त हो गया, मानसिक तौर ते ठीक हो गया, बाकी ते सब मानसिक रोगी ने। गुस्ताखी माफ, हर उस मनुख नूं अपने आप नूं मानसिक रोगी मन लेना चाहिदा जिहदे अंदर यह भुख नहीं है, यह भुख नहीं है। जैसे खिड़े मत्थे मनुख मन लैंदा है शरीरक तल ते मैं रोगी हाँ, भुख नहीं लगती पई, रोगी है। शरीरक रोग मनुख कबूल करदा है, दूजिआं नूं दसदा भी है, मैनूं इह रोग हो गया, इह तकलीफ है, दूजे नूं दसदा भी है, कई दफा वधा चढ़ा के दसदा है। मानसिक रोग मनुख छुपांदा है, मैं बेईमान हाँ, मैं

गुरमत का जमाना आया, धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया। आपने साफ कह दिता जब प्रभु ने ही ऐसा जीवन बनाया है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, दोहां दी फिक्र करो, दोहे पासे दी फिक्र करो।

0: कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और वाकई जिस दिन ये ना कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बीज ना कुछ हो के एक दिन फल बन जाता है, दरख्त बन जाता है, पर पहले ही तो मिटता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो मैर्ज करा एक बाहर दी यात्रा है, एक अंदर दी यात्रा है, एक अहंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। नु मैं पूर्ण तौर से धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों खोलना सी, पर समा अपने ढंग नाल जो है चला गया। दो मिनट मैं आप जी दे होर लवां। अंदर दी यात्रा नु ही ध्यान साधना कहिंदे ने। ध्यान दा अंदर जाना, ध्यान दा बाहर जाना, बाहर दी यात्रा। बाहर मनुख उदों दुखी हो जांदा जद उस तों कोई अगे है, उस तों कोई अगे है, किसी चीज दे च भी अगे होवे। प्रभुता च अगे, धन दे च अगे, शक्ति दे च अगे, कला दे च अगे, गुणा दे च अगे, रूप रंग दे च अगे, किसी चीज दे च ही अगे दुखी हो जाएगा। तो सारी दुनिया च मनुखां नूं बहुता दुख इस गल दा हुंदा है, ये अगे कहां है। अपने ही दुख मनुख दे बथेरे हुंदे ने, पर एक दुख होर सहेड़ लैंदा है, ये अगे क्यों? इस नूं पराई तात कहिंदे ने। महाराज ने जिक्र किया, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे ना होवे भला। पराई तात लई फिरदा, ये अगे क्यों है? अंदर दी यात्रा जद कोई अगे आउंदा है तो खुश हो जांदा है, उहदे कदमां विच बैठ के प्रसन्न होंदा है। हर के संत बताओ मार्ग, हों पीछे लाग चली। पीछे चलण विच खुशी होंदी उसकी, उत्थे ना कुछ होने दे चुनो खुशी मिलती है। जद कोई अगे जा रहे आउंदा है, उदी उमंग वध जांदी है, तरंग वध जांदी है। सिर्फ मैं ही प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलिया, कोई होर भी चलिया और बहुत अगे लंघे है, बहुत अगे लंघे है, उन्हों खुशी मिलती है। बाहर दी यात्रा जो अगे लंघे है, जैलसी आउंदी है, ईर्षा आउंदी है, तात आउंदी है। पर अंदर दी यात्रा जद कोई अगे लंघ जाए, खुशी आउंदी है। और अंदर दी यात्रा जिस दिन मनुख ना कुछ हो जाता है, उस दिन परमात्मा हो जाता है। इसका जो पूर्ण खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बयान किया है, किसी वक्त सतगुरु ने फिर नदी नाव संजोगी मेले कराए ते खोलांगे अज इतनी सेवा प्रवान करनी, साहेब रहमत करन थोड़े ध्यान नु अंतरमुखी लै जाण। यात्रा अंदर दी होवे, और अंदर दी यात्रा विच जिहड़े गुण पनपदे ने, वह कागजी फुल नहीं आउंदे, प्लास्टिक दे फुल नहीं आउंदे, असली फुल आउंदे ने। उन्हां दी जिंद जान आउंदी है, उन्हां दी बकायदा बुनियाद आउंदी है, और वह ऐसे गुण आउंदे ने जिन्हां दे उत्ते परमात्मा सदके जांदा है, परमात्मा गलवकड़ी च लैंदा है। इस वास्ते भगत परमात्मा नूं प्यारे ने, भगत सब तो नेड़े ने सतगुर सारिआं नूं। भगती दा तोहफा, भगती दा ए महान दान झोली विच पावे ताकि साडा जीवन धन धन हो जाए। मैं फिर अर्ज करा, सुन के भरोसा बनदा है, पर भरोसा साडा कोई तोड़ सकदा है? निक्की निक्की गल ते भरोसे टुट जांदे ने।
1: ओंकार सतनाम प्रतापुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुर प्रसाद। मुकुसरे शास्त्र खटो पिंग ग्रंथ छुड़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप साहब सिंह जी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख के दो रूप मने ने, निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप विच ओ सूक्ष्म है, अदृश्य है, सरगुण रूप विच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है।

0: बुनियाद नहीं दिखाई देंगी। दरख्त दिखाई देंदा है, जड़ां नहीं दिखाई देंदियां। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनूं इंज बयान करिए, जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है, तो जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने, और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है, तो जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य का, उस अरूप का, उस गुप्त का खेल है, तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, पर इन्हां लहरां का पैदा होना, इन्हां लहरां का मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परले सब परमात्मा दे विच हो रही है, सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है, खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है। तो ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है, जाना उस दे कोल पैंदा है जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उस दे कोल जाना है, ना उसनूं लभना है, सिर्फ जागना है, सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर हैं, ते हाजिर हजूर हैं। रविदास कहिंदे ने ए हथ भी जितना तन तो दूर जा सकदा है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल सी, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागन था। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागे हुई नहीं है। इंज कहते असी अधे जागे हुए हैं, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देता है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आता है, भजन का नहीं। वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं, किसनों रस आता है? नहीं। पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आता है। रसना अधी जागी हुई है, अधी सुती हुई। अखा अधियां जागिया ने, अधियां सुतियां हुई ने। संसार नू वेख रही ने, निरंकार नू नहीं। कन अधे जागे ने, अधे सुते ने। ये जगत नू सुन रहे ने, गुरु नू नहीं सुनते, ना परमात्मा नू सुनते। शरीर संसार नू स्पर्श कर रहा है, निरंकार नू नहीं। जब कोई पूर्ण तौर पर जाग जाता है, सुचेत हो जाता है, तो रसना नू भजन का भी रस आन लग पैंदा। रसना गीदी बोलत राम, वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जाता है। उनू जो कुछ दिखाई देंदा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नू जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता, और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच बस जाता है। तो मैं इस तरह जब भी किसी महापुरुष नूं आत्म ज्ञान होया वो इस गल ते हैरान होया प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया, लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं आता कि वह मिलिया होया, जिसनों असी भगत संत कह देने उन्हों पता है, जो ते हाथ तो भी नेड़े है, वो ते हाजिर नाजर है। जब कभी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नूं दसा। हकीकत यह है, असलियत यह है। और कभी कर्म कांड तो उच्चे उठन की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखु नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते हैं कि राम नाम का हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है, ये हीरा हुण मैं देना चाहना वेचना चाहना। कहिंदे ने संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों, तो उस दे अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियां नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं आउंदा, ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नव निध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उस दे अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते हैं मैं तलाश कर रहे हैं उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकते ने मैं बेचना चाहता। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन पटन कहते हैं बाजार में। आप कहते हैं कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरियां दी मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदण दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है वेचना चाहना, जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं, पता है मंडी की है? सत्संग। हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा। गली गली विच मंदिर हैं, सत्संग किधरे किधरे। गली गली विच गुरुद्वारे ने, सत्संग किधरे। सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पए ने मंदिर, या किधरे कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल दियां पईयां। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल दियां ने। रैराज साहब का पाठ टेप ला लो, असा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुन लो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा, जे सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाना। बस मनुख भी इस तरह का ही हो गया, ये भी मैं कर मशीन ही हो गई, मशीन की तरह की, यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है। जागृत नहीं है, सुचेत पना नहीं है। प्रभु की उस तक करो संत मेत सावधान एकाग्र चीत, जिड़ा कम जितना कीमती होवे अहम होवे खास होवे उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना, गुरु से कोई ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहर बाजार ने उन्होंने नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय इन्ह दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख का काम शुरू होया। बई सिर्फ हीरे, रतन पन्ने लाल मूंगे नीलम जवाहरात पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता है या मोटा मांस बिकता है, जौहरिया की दुकाना खोल। जयपुर का जोड़ा जौहरी बाजार है उत्थे हीरिया की खरीद फरोख्त होती है, उत्थे सिलसिला है। और इतना वड्डा यह देश है, हीरिया की मंडी हीरिया का बाजार किधरे किधरे, हर थान पर नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर में हीरिया की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहिंदे ने जिहड़ा हीरा कोल है वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है, जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां ने मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इत्थे मूर्खता होवेगी, इत्थे मूर्खता होवेगी। हर जगह दे सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती, इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहिंदे ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहिंदे ने भ्रमण करदिया करदिया कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग पैंदा, तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जाती है मैनू मंडी लग पई। पर आप कहिंदे ने मेरी खुशी एकदम मायूसी दे बदल जाती है, क्यों? नहीं पटन नहीं पार खो, पटन ते लब पे है, बाजार ते लब पे है, पर उत्थे जड़े आमदे ने पार खो नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां विच भगवान की कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां विच गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां विच खुदा दी कोई समझ नहीं, खुदा दा कोई ज्ञान नहीं। कहिंदे ने पारखू ही कोई नहीं, ते जद पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है, जद पारखू ही नहीं है तो हीरा कच है और की है। जयपुर दे जौहरी बाजार विच एक सिंह दी भी दुकान है, वो हीरे मोतियां दा काम करदा है। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, तो मैं कह लगा कहने जी ये रतन तुसी वेखे ने, नहीं विशेष रूप में यह नौ आते हैं, नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कह लगे तुसी देखे ने, मैं नहीं सारे नहीं देखे। कह लगे अज वक्त कढ़ो, मैं थानू दुकान पर लै जाना अपनी, सारे दिखा देना। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੜੋਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੌਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਜਜ਼ਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤ ਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਕੀ, ਸਮਝ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਰੱਬੀ ਚਾਨਣਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੋਗੇ। ਚਾਨਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਲ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਪਾਰਖੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿ। ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਉਂ? ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, नहीं गाहक, वो ग्राहक नहीं है। पारखू तो है, समझते है गल दी, पर इसके अंदर ग्राहकता नहीं है, तड़प नहीं है, खिंच नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है। आप कहते ने कदी कदाई किसे सत्संग, किसे शहर, किसे मंडी देखदा पारखू भी लभ पे है, ग्राहक भी लभ पे, लेना चाहता है, उसके अंदर लेने की भी तड़प है, उसके अंदर लेने की भी खिच है, वो लेना भी चाहता है, वो प्राप्त भी करना चाहता है। तो भगत जी कहते हैं बहुत मन खुश होता है, ग्राहक भी लभ पे। पर आप कहते ने मेरा दुख अपनी थां ते है, ग्राहक ते लभे है पर मुल नहीं देना चाहता, मुफ्त दे च मंगता है। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, कहते जेड़ी चीज छेती मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, वो कोई खास नहीं आती। पहाड़ के उपर गीटियां पत्थरों जो मिल जाएंगे, हीरे ते लभने पैंदे, संख ते सिपियां सागर के कंडे उज लभ पैंदियां ने, मोती ते गहरे तल दे चो लभने पैंदे। जो छेती मिल जाए, जल्दी मिल जाए, वो चीज कोई खास नहीं आती। एक रब्बी नहीं है मैं। कबीर कहंदे ने पारखू भी लभते है, ग्राहक भी लभते है, समझ भी है उसमें, लेना भी चाहता है, मुल नहीं देंदा, नहीं गाहक नहीं मोल। इत कबीर को पूछिए फिर मुल की है, दस दो मुल की है। तो आप कहंदे ने कंचन सो पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन अपनी सोचनी, मन अपने विचार, मन अपनी चितवनी, ये भेट कर दे। मनुख दे विचारां दे वासना है, हंकार है, लोभ है, ये भेट कर दे। गुरु दे विचारां दे करतार है, प्रेम है, दया है, सील है, संजम है, ये अदला बदली करनी पड़ेगी। ग्राहक की करता है, कुछ पैसे देंदा है, वस्तु ले लेंदा है, इत्थे अपनी मत भेट कर ले, गुरु की मत लै जा। गुरु की मत विच ज्ञान है, तेरी मत विच अज्ञान है। गुरु की मत विच प्रेम है, तेरी मत विच घृणा है। गुरु की मत विच समदृष्टि है, तेरी मत विच वितकरण है। गुरु की मत विच भक्ति है, तेरी मत विच नास्तिकता है। गुरु की मत विच निर्वैरता है, निर्भयता है, तेरी मत विच वैर विरोध है। ये मत भेट कर, गुरु की मत लै लै। पर गजब की गल है, मनुख कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता। कौड़ी दे के भी हीरा नहीं लेना चाहता, अपनी गंदी मत दे के भी उज्जवल मत गुरु की नहीं लेना चाहता। जबकि गुरु कहता है गुरु की मत तू ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, परिक्षर ते त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव दियो। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत मिले। पहले पहले बच्चा पूरने ते लिखता है, पूरने पाने पैंदे, ये सब पूरने पाने ने। धन अर्पण करना, फुल अर्पण करने, वस्त्र अर्पण करने, अन्न अर्पण करना, ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। और जैसे मन अर्पण किया, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना, कथा कीर्तन सुनना, ये सिर्फ अपने आप नू तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेट कर देंगे, अपना मन भेट कर देंगे। तो जिस दिन अपना मन देन नू जी करे, मत भेट करन नू जी करे, समझ लो सत्संग का फल मिल गया, सत्संग की सफलता प्राप्त हो गई, झोली विच पै गई। ये फल है, क्योंकि अपना मन जैसे भेट करता है मनुख, ते गुरु की मत प्राप्त आती है, तो गुरु की मत विच ही परमात्मा है। मनुख की मत विच पदार्थ ने, मनुख की सोचनी विच की है, संसार है, पदार्थ ने। गुरु की सोचनी दे परमात्मा है निरंकार है। मत भेट की अपनी ले ली गुरु की मत, उस मत द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मत दे शराब पीना है, गुरु की मत दे अमृत छकना है। अपनी मत दे दोपहर न उठना है, गुरु की मत दे अमृत वेले उठना। बस जैसे गुरु की मत आई सारे ही दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत दे ही परमात्मा है, गुरु की मत दे सारा अनंत परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन, सत्संग करद्या करद्या साडा मन तैयार हो गए कि ये मन भेट कर देना है, गुरु की मत लै लेनी है, इतने शब्द प्रवान करना। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, ओ महान हीरा, ओ महान रब्बी दौलत सानू भी प्राप्त हो गए, जिसकी चर्चा जिसका जिक्र सतगुरु की जो है बाणी विच है। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, महापुरखों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। ये पावन स्थान जिथे मैं देखदा वाकई छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है, संगत ते पंगत का सिलसिला है। पातशाह रहमत करन, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बख्शिशा करन, संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दियां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां दी पूर्ति होंदी रहे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

छोटा कष्ट जहान वाले सुन लो मैं वड्डी गल कह रहा हूं मेरा कष्ट चला जाना क्यों मैनू रब लभ पिया वड्डा घर लभ पिया।

तन भी कंचन हो गया मन भी भरी संगत महाराज कहते अज तो एदा नाम मुरारी है प्रेमा कौड़ी महाराज कहते मुरारी नाल कौड़ी बोलना औखा होगा अख सत एदा नाम सी मुरारी रख दे हुण एक जकारा देना जेड़ा मैं हिल गया पढ़ गुरु अमरदास जी ने नदर करके ए मुरारी प्रेम कौड़ी नू मुरारी नू ए नदर करके एहो जी अवस्था ते पुजा दिता के नाम दूजे नू जपान वाली सत्या दे दिते दूजे नू नाम

0: क्या गुरु लब लेगा?
1: हाँ है टेक एक रुक मैं बच्चे ही बोल रहा जेड़ा दिल्ली तो जथा भाई मती दा सेवा सोसाइटी दे आए ने सालाना प्रोग्राम होया गुरु रामदास दे घर शुकराना करन आए ने वो सारा जथा इत्थे अगे आ जावे बाकी सारे बैठे रहो इसे तरह ही एक अद्धे मिनट समाप्ति है बीबी जगजीत कौर नाल सारियां आई हैं भैणा वीर वो जिथे बैठे ने उठ के अगे आ जाए टाइम बच जाएगा अगला सुने हो जी शिया उपल खत्री वो कहता है ऐसा सिख तो भगाना केड़ा होएगा जिन्हों गुरु अमरदास महाराज ने इनिया दातां दे दियां आखो साथ सुने ध्यान जिन्हों इनिया दातां दे दी वो कहना क्यों ना उठ के मैं कह दिया मेरी कन्या हाजर है मेरी कन्या हाजर है महाराज एक मुश्किल सी ओ मुश्किल की सी सुन लो जरा जिते थोड़ा जा खड़का दड़का होवे सुन लो ते हां मुश्किल की सी कहंदा वी मेरा दिल करदा है वी अपनी कन्या एहो जे सिख जिते एडे दयालू होवे गुरु अमरदास क्यों ना देवां वारस पर कहंदा वोटी ने नहीं मानना आखो सतवां ओ खड़के दड़के आली गुरु साहब नूं कह गया महाराज मेरी कन्या आ जाए पहले पता कीता वोटी हैगी कित्थे जदों पता कीता ते पता लगा भी वोटी लंगर विच बर्तन मांज रही आखो सतनाम वोटी लंगर विच बर्तन मांज रही कहिंदा इहनूं छेड़ना नहीं बर्तन मांजी जाए कुड़ी दी बांह फड़ी दरबार च लै कहंदा जी मेरी बच्ची हाजर है आखो सात महाराज कहंदे पूरा करके तोरना जगत विच जगत दी पीड़ा हरन लई महाराज ने आनंद पड़ाता लावां गुरु रामदास जी वेले होईआं उदों आनंद पड़िया जांदा आनंद पड़ाता ओह इहदी वोटी नूं जा के किसे ने कहता वो जेड़ा बार बुए ते प्रेमा कौड़ी सी तेरे घर वाले ने अपनी कुड़ी ओदे नाल आनंद पड़ाता आखो सात वो आ गई गुस्से दरबार जा गई गुरु अमरदास जी यही कीता जे मेरी कुड़ी लंबी सी

0: hot.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

दर के आ सो घर के आ जित वह सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे आ, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है। इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चकर चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत, अरूप है अनूप है। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब दा अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिस दे घर दे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर दी तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है। इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है। भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है। उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते ने, सारिया का ना एको हो जाता है कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात, ना नील ना थेम। जब भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धी है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक नदी ते है, सागर नहीं है, नहीं है, समुन्द्र नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तार्किक होंगे, कट्टर बड़े होंगे, और कमाल दी गल, अकल तो बिना अकल दा दावा, अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने दा दावा, धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है। फिर पता की है, किसी एक कद नूं अकल आ जाए ते इस तरह दी गल कवे, फिर कटो उसदे बंदबंद, बिठाओ उसनूं तत्ती तवी ते, कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे, ईसा सोली ते लटकदा पिया। मुहम्मद साहब दे बदर दी लड़ाई दे अगले दो दन तोड़ दिते गए। सुकरात नूं जहर दा प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए, एक नूं तुसी सूली ते टंगे, एक नूं जहर दे के मार रहे, एक दे दन तुसी तोड़ दिते,

चतर चकर हरता चतर चकर दान चतर चकर जान चतर चकर वर्ती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर मान चतर चकर दान चाचरी छंद न सतर न मित्र न परम न पितर न कर मंग न काय आ जन्म आ जाए न चित्र न मित्र पर पवित्र परथी से आदि से अदर से अकर से भगवती छंत परसाद कथते

के सर्वतर देशा के सर्वतर पेशा के सर्वतर राजा के सर्वतर साजा के सर्वतर दीन के सर्वतर लीन के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देशा के सर्वतर पेशा के सर्वतर काल के सर्वतर पाल के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजा के सर्वतर राजा के सर्वतर सोख के सर्वतर पोख के सर्वतर तराण के सर्वतर प्राण के सर्वतर देश के सर्वतर पेश के सर्वतर मान सदैव प्रदान के सर्वतर जाप के सर्वतर थाप के सर्वतर पान के सर्वतर मान के सर्वतर इंद्र के सर्वतर चंद्र के सर्वं काली में के परम फही में के आकल आला में के साहेब कला में के हुसन अल वजू है तमाम अल रजू है हमें सल सलाम सलीख तमुदा में गनी मोल सकास्त गरीब उल प्रस्त बिलुंदल मकान जमीन उल जमान तमीज उल तमाम रुजू अल निदान हरी फुल अजी में रजाय के शकीन अनेक उल तरंग है भेद है भंग है अजी जोल नवाज है गनी मुलख राज निरुत स्वरूप तर मुक्त बेभूत पर भूत प्रभा है सुजूत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्त

स्वरूप अपंगं विभूत परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूप निर्बाध विभूत अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे।

वन तम बल तमीज समस्तुला जीज परम परम ईसा समस्तुला दीसा देसुला लेख मेसुला पेख जिमीनुल जमह।

संबत सत्रह सास भण ज अर्ध सास भुन तीन कह ज भाद्रव सुधि अष्टमी रावारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त जुनी से पहुंगर प्रसाद आसा महला पहला वार स्लोका नाल स्लोक भी महले पहले के लिखे ढूंढे असरा जी की तुही

सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला वड्डी वडियाई जा वड्डा नाम वड्डी वडियाई।

उस्माद नाद उस्माद वेद उस्माद जीव उस्माद भेद उस्माद रू उस्माद रंग फिर जंत उस्माद पौन उस्माद पानी उस्माद अग्नि खेडे बेडानी उस्माद धरती उस्माद खानी उस्माद साध लगे पराणी उस्माद संजोग उस्माद विजोग उस्माद

0: जन करता करना किया चिंता फिर करनीता है सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस जुआधी स्वस्थ तिस दबान पाक नान सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नीकियां चंगियां लख

पावड़ी सच्चा साहब एक दो जन सचो सच वरताया जिस तू दे दस मिले तद नी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जन के हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुख।

शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावेर कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैं सूर ना ही लय अपराध जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जातम पाया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में अंकिया कल में भी तो थर्मण हुआ ना खुदाई लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल

सच सूत दरगाह अंदर पाइए तगड़ा धूठ सपूत महला पहला तक ना इंद्री तगड़ा नारी भलके थुको में निदारी।

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देन लई असी लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

हकीकत है, परमात्मा की दृष्टि च कोई बुरा भला नहीं है। गन्ने विच रस पा दिता है परमात्मा ने, अमृत है। संतरे का रस, अंगूरां का रस अमृत है, और इस अमृत नूं मनुख चाहे तो जहर बना सकता है, शराब बना लेगी। रस ते मिठा सी, अंगूरां का कौड़ा हो गया। रस ते स्वादिष्ट सी, मिठा सी, संतरे का कौड़ा हो गया। रस ते मिठा सी, गन्ने का कौड़ा हो गया। मिठे नूं मनुख कौड़ा कर सकता है, अमृत नूं मनुख जहर बना सकता है। मनुख कोल ए तौफीक है, शराब नूं ही देख लो, मनुख ने मिठे नूं कौड़ा कर दिता है, त्रका के। ते जे अमृत नूं मनुख जहर बना सकता है, तो मनुख दे कोल एक तौफीक है, जहर नूं भी अमृत बना सकता है। संख्या जहर ही आती है, हकीम वैद इनू मार के इसका कुश्ता बना लेंदे ने, अमृत हो गई, अमृत हो गई। इकबाल इसनू बड़े सोहने ढंग नाल बयान करते हैं, जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इत पीण का ढंग है, जे तेनू आ जाए अमृत है, जे पीण का ढंग नहीं आया तो जहर है। जे जीण का ढंग आ गया तो जिंदगी अमृत है, जे जीण का ढंग नहीं आया तो जिंदगी ही जहर है। जे रहण का तेनू ढंग आ गया, सारा संसार अमृत है, निरंकार का रूप। जितेनू रहण दा ढंग नहीं आया, सारा संसार जहर है। ये तेरे ते मुनसर है, तू जहर दिच जीवना है कि अमृत दिच जीवना। सतसंग इस वास्ते है, और आज तक बड़े बड़े अवतारी पुरुष महज इसलिए आए कि मनुख चुनाव ठीक कर सके, मनुख चोन ठीक कर सके। अक्सर मनुख चुनाव गलत कर लेंदा है, जिंदगी सारी गलत हो जाती है। जितने जिंदगी दे तारीखी होवेगी, अज्ञान होवेगा, उतनी ही जिंदगी जहरीली बन जाएगी। फिर तारीख मनुख दा संबंध भी तारीखी नाल हुंदा है, रात नाल हुंदा है। अमृत वेले सुत्ता रह जाएगा, रात दी तारीखी नूं उज्जवल करके जुए खाने च बैठा होवेगा, वैश्याले च बैठा होवेगा। मंदरां दी रौनक ते खत्म हो गई, जुए खानियां दी रौनक वध गई। मंदर उसनू कहिंदे ने जिसदा द्वार सवेरे खुलदा है, अमृत वेले खुलदा है। जिथे सवेरे घड़ियाल वजदा है, जिथे सवेरे गुरबाणी दी गूंज उठदी है, उते बेशतर जगह उंजी बंद हो गई। पता है क्यों? अर्थशास्त्र दा एक नियम है, मार्केट दी चीज बहुत पई है पर ग्राहकी नहीं है, कोई लैण वाला नहीं। कि मार्केट दी चीज किन्ने चिर तक पई रहेगी, कोई लैण वाला ही नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं है। कीमत भी गिरदी जाएगी। यकीन जानो, अज धर्म जितना बेकीमत हो गया है, कोई चीज इतनी बेकीमत नहीं। भी मर्ज करते हैं, हकीकत है, सच्चाई है, जबकि उस तो वडमुला और कुछ भी नहीं है। वस्तु बहुत पई है, ग्राहकी नहीं है, कीमत

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देण लई असीं लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां।

तिहारी हमना सिफते कर सकत तुम्हारी आप ले ओ तुम कथा सुधारी कहाँ लगे एहो कीट बखाने महिमा तोर तुही प्रभु जाने पिता

0: से भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देन लई असी लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां।